0: Nah, itu menjadi suatu hal yang membuat kami tuh ngerasa bahwa wah, ini ternyata banyak yang mendukung dan ini menjadi suatu hal yang mulai menjadi star gitu ya, star untuk kami.
1: वो छोटी उम्र की शादियां कर रहे होते हैं वो ये कहते हैं कि गुर्बत की वजह से लेकिन हमारा जो जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि बेटी चाहे किस भी क्लास में पैदा हो उसको बोझ ही समझा जाता है मेरा नाम मारवी अवान है मैं हैदराबाद सन से ताल्लुक रखती हूं मैं औरतों और बच्चों के हुकूक के हवाले से काम करती हूं सबसे अहम है कि ख़वातीन को उनके हुकूक के बारे में और कानून के बारे में कुछ मालूम नहीं है तो उनको उनको उनको उस हवाले से नॉलेज देना छोटे छोटे गांवों में छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में वुमेन प्रोटेक्शन सेल जाता है हमारी टीम जाती है हमारे रज़ाकार जाते हैं बहुत सारी छोटी उम्र की शादियां हमने बहुत कामयाबी से रोकी हैं और उन बच्चियों को उनका बचपन वापस दिया है उनकी तालीम का हक उनको वापस दिया है

0: मुश्किल सिचुएशन से गुजरने वाले हमारे सर्वाइवर्स होते हैं, उसमें रेप सिचुएशंस होती हैं, उसमें चाइल्ड एब्यूज़ होता है, उसमें छोटी उम्र की शादियां होती हैं, उसमें घरेलू तशद्दुद होता है। हम कोशिश यही करते हैं कि बच्चों से उनका बचपन ना छीना जाए। उनको बेहतर नशोनुमा देके पाकिस्तान के फ्यूचर को, हमारे मुल्क के फ्यूचर को प्रोटेक्ट किया जाए।
1: Yang aku rasain setelah ikut kegiatan, kemudian selama mendampingi ya anak-anak, aku ada ngerasa perubahan pada diriku ketika aku pengen melihatkan bahwa perempuan ini bisa bebas melakukan apapun, berekspresi apapun bisa dilakukan. Aku memang ada rencana menikah, tapi di usia aku yang sudah siap. Di usia aku yang sekarang 24 tahun, aku merasa masih belum siap. Dan aku akan menikah sekitar 28 mungkin, atau di atasnya. Karena aku ngerasa di usia itu sudah cukup siap, udah matang gitu ya, secara mental, secara ekonomi, dan lain sebagainya gitu.

0: I exited Nashila. Our husband exited Ashil. Mani itekush Ashil wa ikush Nashila. My dooro Tashila. Mani monto azin digi hundilo. Endilo hori. Jitten tu vadulo murgo vedata yeta hanu vetta. Oyoro timaj baade shaguru sahi. Sahi oro fo vedata nan hoy very baade. I was in Washila, and I was in Washila. I was in Washila, and I was in Washila. I was in Washila, and I was in Washila. I was in Washila, and I was in Washila. I was in Washila, and I was in Washila. I was in Washila, and I was in Washila. I
1: छोटी उम्र की शादियों के लिए सिंध में 2013 का कानून मौजूद है उसके मुताबिक कोई भी लड़का या लड़की बच्चा या बच्ची जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं उनकी शादी करना गैर कानूनी है लैकिंग है वो ये है कि मालूमात नहीं है और हमारा एक बहुत खूबसूरत सा स्लोगन है इसके साथ ही वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर के साथ ही रिपोर्ट वायलेंस रिड्यूस वायलेंस तो हम ये कोशिश करते थे कि बच्चे अपने लिए खुद आवाज उठाएं अगर किसी की सहेली की शादी हो रही है तो सहेली जाके उसको रोके कि ये छोटी उम्र की शादी है अगर बहन की शादी हो रही है तो भाई खड़ा हो जाए कि ये छोटी उम्र की शादी है
0: I am Zinin Manusula Hungary Salano Mare, our community La Hinora, I am Misha Hoy, Shura Hala, my Minder Biano de Vola, my Minder of Navarabola, my Bahibian is your Hamni the Wooden, is a chain is a Hama Caravan. Toba there, my Viva and Biadilla, my Viva is the Marahana Candida Muntu, I got on board the Tugile, Bazar with the Tugile, he was in the Maraduk fan of Waravan, Arantilla. तो जेता आज हमारे सारे दिन ये ता आई एक कुरियो बोसर अशीलम तो यार पशुओं का दो बोसर अशील डॉरुआ थीम बोसर अशील आरे इन ज्योतुर अमरा सा पुगुर्जिन तो याई फाइन पराई फल बहाम गुजी तो इन गुरियो रो आया जा कन शुंदर जगमरा इरा आर फाइन लेरा इन पशुओं निगुरित अतो आर पंद्रह केबाब भी लो शांति लगी आर पंद्रह आए गुड फिश शांति लग दिनों में बन जो एनो लेके गुरे आर हाथ गुरे नहीं ठीक है सी आए

0: मुश्किल सिचुएशन से गुजरने वाले हमारे सर्वाइवर्स होते हैं, उसमें रेप सिचुएशंस होती हैं, उसमें चाइल्ड एब्यूज़ होता है, उसमें छोटी उम्र की शादियां होती हैं, उसमें घरेलू तशद्दुद होता है। हम कोशिश यही करते हैं कि बच्चों से उनका बचपन ना छीना जाए। उनको बेहतर नशोनुमा देके पाकिस्तान के फ्यूचर को, हमारे मुल्क के फ्यूचर को प्रोटेक्ट किया जाए।
1: Yang aku rasain setelah ikut kegiatan, kemudian selama mendampingi ya anak-anak, aku ada ngerasa perubahan pada diriku ketika aku pengen melihatkan bahwa perempuan ini bisa bebas melakukan apapun, berekspresi apapun bisa dilakukan. Aku memang ada rencana menikah, tapi di usia aku yang sudah siap. Di usia aku yang sekarang 24 tahun, aku merasa masih belum siap. Dan aku akan menikah sekitar 28 mungkin, atau di atasnya. Karena aku ngerasa di usia itu sudah cukup siap, udah matang gitu ya, secara mental, secara ekonomi, dan lain sebagainya gitu.

शादियां कर रहे होते हैं वो ये कहते हैं कि गुर्बत की वजह से। लेकिन हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि बेटी चाहे किस भी क्लास में पैदा हो उसको बोझ ही समझा जाता है। मेरा नाम मारवी अवान है, मैं हैदराबाद सन से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं औरतों और बच्चों के हकूक़ के हवाले से काम करती हूँ। सबसे अहम है कि ख़वातीन को उनके हकूक़ के बारे में और कानून के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो उनको उस हवाले से नॉलेज देना, छोटे छोटे गांवों में छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में वुमेन प्रोटेक्शन सेल जाता है, हमारी टीम जाती है, हमारे रज़ाकार जाते हैं। बहुत सारी छोटी उम्र की शादियां हमने बहुत कामयाबी से रोकी हैं और उन बच्चियों को उनका बचपन वापस दिया है, उनकी तालीम का हक उनको वापस दिया है।

0: I exited Noshila. Our husband exited Ashil. Mani ite kush Ashil wa I kush Noshila mai door ota Ashila mani montu azindigi hundilo endilo hori. Jitten tu vadulo murgo bedata ita hanu betta. Oyoro timaj baade shaguru sahi. Sahi oro fuwa bedata nan fuwa very baade. I kush Noshila. আর পো নরগো বেশি শুরু আসিল তো আই ফজিবা বিয়াই বারে যতন করি বলা চাইতাম তো আই বে ওয়ে সঙ্গ করে বলা চাইলাম আজ আমায় এনে নো করে আরে বেশি মাইকদার করিছি আজ আমায় সাদা আমি বেশি বেশি পয়েন্ট বিয়াইব আজ আমার লইর সিরো ইদিটা মমারা হসপিটাল আসিলাম আর জামাই মাটি দেন আল্লাহ বলি হসপিটাল ভর্তি করাইল হসপিটাল তো আইবা দে আরে উনি কে মদন ন করে
1: छोटी उम्र की शादियों के लिए सिंध में 2013 का कानून मौजूद है उसके मुताबिक कोई भी लड़का या लड़की बच्चा या बच्ची जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं उनकी शादी करना गैर कानूनी है लैकिंग है वो ये है कि मालूमात नहीं है और हमारा एक बहुत खूबसूरत सा स्लोगन है इसके साथ ही वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर के साथ ही रिपोर्ट वायलेंस रिड्यूस वायलेंस तो हम ये कोशिश करते थे कि बच्चे अपने लिए खुद आवाज उठाएं अगर किसी की सहेली की शादी हो रही है तो सहेली जाके उसको रोके कि ये छोटी उम्र की शादी है अगर बहन की शादी हो रही है तो भाई खड़ा हो जाए कि ये छोटी उम्र की शादी है
0: आई यार जिन मानुष

0: मुश्किल सिचुएशन से गुजरने वाले हमारे सर्वाइवर्स होते हैं, उसमें रेप सिचुएशंस होती हैं, उसमें चाइल्ड अब्यूज़ होता है, उस पर छोटी उम्र की शादियाँ होती हैं, उसमें घरेलू तशद्दुद होता है। हम कोशिश यही करते हैं कि बच्चों से उनका बचपन ना छीना जाए। उनको बेहतर नशोनुमा देके पाकिस्तान के फ्यूचर को, हमारे मुल्क के फ्यूचर को प्रोटेक्ट किया जाए।
1: Yang aku rasain setelah ikut kegiatan, kemudian selama mendampingi ya anak-anak, aku ada ngerasa perubahan pada diriku ketika aku pengen melihatkan bahwa perempuan ini bisa bebas melakukan apapun, berekspresi apapun bisa dilakukan. Aku memang ada rencana menikah, tapi di usia aku yang sudah siap. Di usia aku yang sekarang 24 tahun, aku merasa masih belum siap. Dan aku akan menikah sekitar 28 mungkin, atau di atasnya. Karena aku ngerasa di usia itu sudah cukup siap, udah matang gitu ya, secara mental, secara ekonomi, dan lain sebagainya gitu.

हकूक के बारे में और कानून के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो उनको उनको उनको उस हवाले से नॉलेज देना, छोटे छोटे गांवों में, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में वुमेन प्रोटेक्शन सेल जाता है, हमारी टीम जाती है, हमारे रजाकार जाते हैं। बहुत सारी छोटी उम्र की शादियां हमने बहुत कामयाबी से रोकी हैं और उन बच्चियों को उनका बचपन वापस दिया है, उनकी तालीम का हक उनको वापस दिया है।

0: मुश्किल सिचुएशन से गुजरने वाले हमारे सर्वाइवर्स होते हैं, उसमें रेप सिचुएशंस होती हैं, उसमें चाइल्ड अब्यूज होता है, उस पर छोटी उम्र की शादियाँ होती हैं, उसमें घरेलू तशद्दुद होता है। हम कोशिश यही करते हैं कि बच्चों से उनका बचपन ना छीना जाए। उनको बेहतर नशोनुमा देके पाकिस्तान के फ्यूचर को, हमारे मुल्क के फ्यूचर को प्रोटेक्ट किया जाए।
1: Yang aku rasain setelah ikut kegiatan, kemudian selama mendampingi ya anak-anak, aku ada merasa perubahan pada diriku ketika aku pengen melihatkan bahwa perempuan ini bisa bebas melakukan apapun, berekspresi apapun bisa dilakukan. Aku memang ada rencana menikah, tapi di usiaku yang sudah siap. Di usiaku yang sekarang 24 tahun, aku merasa masih belum siap. Dan aku akan menikah sekitar 28 mungkin, atau di atasnya. Karena aku ngerasa di usia itu sudah cukup siap, udah matang gitu ya, secara mental, secara ekonomi, dan lain sebagainya gitu.